हार्दिक श्रद्धांजलि तथा समवेदना यस रेडियो लुम्बिनी तथा तिलोत्तमा टेलिभिजन का चियर सदस्य बुवा पदम बहादुर पुन र आमा शशिकला पुन का सुपुत्र प्रेम बहादुर पुन को उपचार को क्रम में यही जेठ 5 गते 59 वर्ष को उमेर में भएको असामयिक निधन को खबर ले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौं। शोक को इस घड़ी में संपूर्ण परिवार तथा आफन्तजन में धैर्य धारण करने शक्ति मिलोस्। शोकाकुल परिवारजन प्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं। साथै स्वर्गीय प्रेम बहादुर पुनजीलाई हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। अध्यक्ष अर्जुनराज उपाध्याय तथा रेडियो लुम्बिनी एवं तिलोत्तमा टेलिभिजन परिवार।

0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।

चुपचाप बसे पछी दिशा पिसाब गर्नलाई चर्की आफ्नै बनाई जंगल जाने बाध्यता।

0: सब मिलके खियावल जाए।
1: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
0: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जवा बेची दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे 2 जवा बेची देवल जाए।
1: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाहिए। खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर ढिका के पिए के चाहिए। बुझलू ने?
0: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपंदेही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपंदेही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
2: यति बेला दिउँसोको

0: बिस्तर, बेड, दराज, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, किचन, पार्केटिंग काठ को रेलिंग, सोफा, पार्टेशन लगायत घर अफिस होटल का संपूर्ण इंटेरियर काम को लागी ग्लोबल इंटेरियर एंड कास्ट उद्योग समझनुहोस्। प्रोप्राइटर लील कार्की, फोन 98570-72397 र 98475-42914। ग्लोबल इंटेरियर एंड कास्ट उद्योग प्रणाली तिलोत्तमा छ गोरकट्टा।
1: यति बेला साँझको

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364460।
1: Peace or sanity, come on.